स्टील्ट जंगी तैयारी के नए मॉडल सामने आए हैं जिनमें अहम तब्दीलियां नुमाया हैं। हम आपके साथ सरताज अख्सान का TRT न्यूज के लिए लिखा गया तफसीली जायजा शेयर कर रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो आइए आसमान के इस नए सितारे की कहानी मिलकर सुनते हैं।

कान के कॉकपिट में तुलगार नजर आ रहा है। बारीकबीन आंखों से एक और अहम डिटेल नहीं छुप सकी और वो है कॉकपिट के अंदर का मंजर। असल सान का तैयार करदा तुलगार हेलमेट सिस्टम कुछ तस्वीर में देखा जा सकता है। ये जदीद सिस्टम पायलट के हेलमेट के अंदर मौजूद शीशे यानी विजोर पर परवाज और मिशन की तमाम ज़रूरी मालूमात डिजिटल तौर पर जाहिर करता है।

0: इसको आने वाले हफ्तों में क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो के सामने पेश किया जाएगा, जो मुल्क के आला तरीन फैसला साज इदारों में से एक है, जिसके बाद पीपल्स पावर की एक ऐवानी नेशनल असेंबली में उस पर बहस की जाएगी। मुजवजा असलाहत के तहत किसानों को ज़्यादा लचक दी जाएगी, गैर मुल्की तजारत में सरकारी कंपनियों का लाजमी दरमियानी किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा और गाड़ियों की दरामद पर लगी पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी। रियाज़ कानेल ने यह भी कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला अफजाई करना चाहती है और बैरून मुल्क मुकीम क्यूबन बाशिंदों को वही हकूक देगी जो जजीरे पर रहने वाले शहरियों को हासिल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत को ज़्यादा कार आमद बनाने और ब्यूरोक्रेसी को कम करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर वजारतों की तादाद 27 से कम करके 20 कर दी जाएगी। सदर ने मसनूआत पर दी जाने वाली सरकारी रियायतों को भी बतदरीज ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसके तहत समाजी इमदाद को ख़ास तौर पर उन लोगों की तरफ मोड़ दिया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस्लाहाती पैकेज के हिस्से के तौर पर क्यूबा अपने सेहत के शोबे को नए कारोबारी मॉडल्स और ऑपरेटर्स के लिए खोलने का इरादा रखता है। ये इकदाम अमरीकी पाबंदियों की वजह से कई गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से मुल्क में काम ख़त्म करने या कम करने के फैसले के बाद सामने आया है।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ऐलान किया है कि ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो तकरीबन 3 दिनों से बैरूनी बिजली के बगैर था, उसको दोबारा ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया है। एजेंसी की सालसी में मकामी जंगबंदी के तहत मरम्मत का काम किया गया। बंदिश के दौरान प्लांट ने हंगामी डीजल जनरेटर से अपने 6 शटडाउन रिएक्टर्स को ठंडा करने के लिए ज़रूरी बिजली हासिल की। ये 19वां मौका है कि यूक्रेन रूस जंग के आगाज़ के बाद से प्लांट का बैरूनी बिजली का रब्ता मुनक़ता हुआ है। जमहूरिया कांगो में तस्दीक शुदा एबोला केसेस की तादाद बढ़कर 710 हो गई है, जिसमें 149 मौत भी शामिल हैं। ये मालूम सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सामने आई हैं। गुज़िश्ता जुम्मे तक के रिकॉर्ड किए गए इन आदाद शुमार में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट होने वाले 21 नए वाकयात भी शामिल हैं। मशरकी कांगो में हुकाम की जानिब से इस वबा के ऐलान के 1 माह से भी कम अरसे के बाद मरने वालों की तादाद 100 से तजावज कर गई है, जबकि अहलकार इस बीमारी पर काबू पाने के लिए कोशिशें तेज कर रहे हैं। और सामने तुर्की की कौमी फुटबॉल टीम 2026 फीफा आलमी कप में ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 0 के मुकाबले में 2 गोल से हार गई। कैनेडा के शहर वैंकूवर में खेले गए मैच में तुर्क टीम ने कब्जा बरकरार रखा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया के ठोस दिफा को ना तोड़ सकी। ऑस्ट्रेलियाई डिफेंडर हैरी साउटर और गोलकीपर पैट्रिक बीच मैच के स्टार रहे, जबकि नेस्ट्री ईरान कुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने गोल स्कोर किए, जिन्होंने अपनी टीम की फतह को यकीनी बनाया। इस 0-2 की जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट के साथ टूर्नामेंट का आगाज कर रहा है, जबकि तुर्की 19 जून को अपने दूसरे ग्रुप मैच में पैराग्वे का सामना करेगा। और कतर ने आलमी कप में अपनी तारीख का पहला पॉइंट हासिल किया, जब बू आलम खोखी के गोल ने ग्रुप बी मैच में स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-1 का ड्रॉ हासिल किया। स्विस खिलाड़ी ने 17वें मिनट में बढ़तरी हासिल की, जब ब्रेल एम्बोलो ने पुरसुकून अंदाज में पेनल्टी को गोल में डाल दिया, लेकिन इस मैच में 26 कोशिशों के बावजूद मजीद गोल न करने की कीमत चुकाए, जिस मैच में वो किक ऑफ से ही हावी थे। कतर ने कैलिफोर्निया की तेज धूप में दबाव को बर्दाश्त किया और इजाफी वक्त के गहरे वक्त में स्विस टीम को हैरान कर दिया। कप्तान बू आलम खोखी ने हुमाम अहमद के बाएं जानिब से क्रॉस पर हेड करके स्टेडियम में हंगामा बरपा कर दिया। कनाडा ने बॉस्निया और हर्जगोविना के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ग्रुप में कोई जीत हासिल नहीं की। कतर वैंकूवर में मेजबान कनाडा का सामना करेगा और स्विट्जरलैंड अगले ग्रुप बी मैचेस में लॉस एंजलिस स्टेडियम में बॉस्निया के खिलाफ खेलेगा। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।

अहम हकीकतों का सामना करने की वजह से ही ये लोग जिंदगी को दूसरों से ज्यादा मजबूती से थामे हुए हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही गजब में एक तंदूर के सामने रोटी की लाइन पहले ही लंबी हो चुकी होती है। लोग एक तरफ मुल्की हालात पर बात कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ तंदूर से उठने वाली ताज़ा रोटी की खुशबू गली के कोने तक फैल जाती है। उसी वक्त अलकुद्स की एक छोटी सी दुकान में कॉफ़ी के दाने पिस रहे होते हैं। नाबलुस में केतली से उबलती हुई कॉफ़ी की खुशबू इंसान को टेलीविज़न पर आने वाली जंग की तमाम खबरों से ज़्यादा सच्ची लगती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मगरबी किनारे में चेक पोस्टों पर पहुंचने के लिए रास्तों पर निकल पड़े हैं। वो जानते हैं कि वहां घंटों थका देने वाला इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो घर से निकलते वक्त अपने बच्चों के सर पर हाथ फेरना और दरवाज़ा बंद करते वक्त अपना ख्याल रखना कहना कभी नहीं भूलते, क्योंकि ज़िंदगी इन्हीं छोटी छोटी तफसीलात के सहारे खामोशी से मुज़ाहमत कर रही है। बाज़ औक़ात बिजली चली जाती है और घंटों नहीं आती, लेकिन इस घुप अंधेरे में भी आपको घर के किसी कोने में पढ़ते हुए एक नौजवान पर नज़र पड़ जाती है। वो अपने सामने रखी किताबों और नोट्स को एक मोमबत्ती के शोले या मोबाइल फ़ोन की हल्की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता है। कुछ लोग इसी फ़ोन के ज़रिए सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस वक्त आपको यह समझ आती है कि कुछ रोशनियाँ बिजली जाने पर भी नहीं बुझती। फिर अचानक किसी गली से बच्चों की हंसी और शोर की आवाज़ें गूंजती हैं। दो पत्थरों को गोल पोस्ट बनाकर वो बच्चे मिट्टी और धूल के बीच एक फटी हुई गेंद के पीछे भाग रहे होते हैं। दुनिया की भारी तरीन अखबारी सुर्खियों के नीचे भी बचपन अपने लिए खेलने की एक छोटी सी जगह ढूंढ ही लेता है। फलस्तीन का सबसे बड़ा राज भी इसी बात पर छुपा है। लोग जिंदगी के मामूलात को मुकम्मल तौर पर खो देने से बचने के लिए अपनी रोज़मर्रा की आदतों को मजबूती से थामे हुए हैं। सुबह का नाश्ता, ख़ानदान के साथ रात का खाना या बालकनी में पी जाने वाली चाय की एक प्याली इंसान के लिए वतन की आखिरी बची हुई ज़मीन बन जाती है। शाम के वक्त गलियों में एक बार फिर रौनक लौट आती है। कमी और तंगी के बावजूद घरों में पकने वाले खाने की खुशबू खिड़कियों से निकलकर गलियों में फैल जाती है। वो खाना अक्सर बड़े दस्तरखानों पर हमसायों के साथ बांटकर खाया जाता है। फ़िलिस्तीन में बांटना सिर्फ एक पुरानी रवायत नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर ज़िंदा रहने का एक तरीका है। शाम ढले गजा में आप ख़ानदानों को समंदर की तरफ जाते हुए देखते हैं। वो अपने इर्द गिर्द की महसूर दुनिया को चंद मिनटों के लिए भूलने के लिए बहिरा रूम के ठंडे पानी में अपने पाँव डाल देते हैं। बच्चे लहरों से खेलते हैं, जबकि बड़े उफक की लकीर पर नज़रें जमाए देर तक देखते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए उफक की तरफ देखना ही आज़ादी का सांस लेना होता है। इसी दौरान किसी गली से अचानक खुशी की तालियां और किलकारियां गूंज उठती हैं। इस बार ये आवाज़ किसी गम की खबर पर नहीं, बल्कि एक शादी के लिए बुलंद हुई है। बिजली ना हो, गलियां अंधेरे में डूब जाएं, या ये मालूम ना हो कि कल उनके साथ क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शादी फिर भी होगी और रवायती रक्स फिर भी पेश किया जाएगा, क्योंकि लोग मुस्तकबिल पर अपने ईमान को अपने ही गीतों के ज़रिए ज़िंदा रखते हैं। फ़िलिस्तीन को समझने का मतलब सिर्फ आसमान से गिरने वाले बमों को गिनना नहीं है। फ़िलिस्तीन को असल में समझने का मतलब ये है कि उस मलबे और पत्थरों के ढेर के दरमियान भी ज़िंदगी का दिफा करने से पीछे ना हटने वाले इंसान को दिल की आँख से देखा जाए। दुनिया की नज़र में फ़िलिस्तीन शायद सिर्फ एक उदास खबर की सुर्खी हो, लेकिन ठीक उसी सेकंड में एक तबाहशुदा घर के छोटे से बावर्ची खाने में कोई अब भी चाय दम कर रहा था। एक कौम को सीधा और मजबूत खड़ा रखने वाली चीज़ बिल्कुल यही है, हर तरह की तबाही के बावजूद ज़िंदगी का ज़िद के साथ जारी रहना। अगले हिस्से में हम उन लोगों की कहानियाँ सुनेंगे जिन्होंने इस ज़मीन पर आज़ादी की सबसे भारी कीमत चुकाई है। आज़ादी के कैदी के उन्वान पर मबनी अगली किस्त में मुलाकात होगी।